0: 自闭更等增物林冲比爬密集黑日和浓润黑日在地和马继人去比和人日不及和罗布国马
1: 还加十次个五马里冲比娘子间这么的财富冲清的里最近的三位爬个家让当时能不
2: 冲清的啦
3: यार सेदंग संगना जितना वार्कम देगा सिलान चित शेंखे जोंगरगने खंगन थापतुम बाची लंगवी शाचुंग चंबा सेनी सिरगन्यामो सिला न्यामसुजी जुयल